पायदान में बैठा के अल्लाह से नजदीक करने की कोशिश की, मुख्तलिफ, कभी तवाफ के जरिए से, कभी सही के जरिए से, हज में मुख्तलिफ जहत से, मसलन इबादी एतबार से अगर आप देखें, अगरचे इंसान की जिंदगी का हल्लमा बंदगी का ही है, इबादत से बाहर कोई चीज नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है कि उर्फ़-ए-आम में मशहूर होता है मसलन नमाज, रोज़ा, तस्बीह, तहलील, दुआ, इन सारी चीज़ों को हम इबादत समझते हैं, बाकी चीज़ों को इबादी एतबार से दुआएं पढ़ाई गई, तौहीद का बार बार जिक्र किया गया, तौहीद से नज़दीक लाने की कोशिश की गई, तौहीद पेश की गई, लेकिन उसके अलावा समाजी एतबार से मसावात का दर्स दिया गया, यहाँ पे आके कोई फख्र मत करना। अब आजकल हालात ने फिर उस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि फर्क पैदा हो रहा है, यहाँ पे आके कोई फर्क मत करना, एक जैसे कपड़े पहनो सबके लिए एक ही, सिवाय इसके कोई मरीज है तो 19-20 थोड़ी बहुत छूट है, वरना सबके लिए वही अरकान है। ऐसा नहीं कि मसलन कोई आदमी थोड़ा सा बड़े पैमाने पे तो कहा ठीक है आपके लिए तवाफ माफ है, मसलन आपके लिए फला चीज माफ है, सबके लिए वही चीजें वाजिब, एहराम सबके लिए सेम होगा, कहां पे रुकना है, कहां किस टाइम जाना है, कहां से सारी सारे अहकाम मसावात, बल्कि और उससे आगे। अभी वो चूंकि उस तफसील में एक एक रुकन के फलसफे पे बात नहीं कर रहे हैं, लिहाजा सिर्फ इशारा कि बाज ऐसी चीजें हैं कि जहां पे इंसान को इनकिसारी करनी पड़ती है, इनकिसारी यानी अपने नफ्स को तोड़ना पड़ता है, तब कहीं जाके वो रुकन पूरे होते हैं, वो चीजें पूरी होती हैं मुख्तलिफ जिहाद से। लिहाजा जहां पे एक तरफ से इबादी एतबार से इंसान को आमादा किया गया और दीन से नजदीक लाने की कोशिश की गई, वहीं दूसरी तरफ से सामाजिक एतबार से, क्योंकि जब तक ये सारी चीजें मिलेंगी नहीं तब वाकई इंसान सही दीनदार नहीं होगा, तो इसे नजदीक नहीं होगा। ये थोड़ी हो सकता है कि एक इंसान मसल मस्जिद में आए, अच्छा खासा सब कुछ दे, लेकिन बाहर जाके वही तकब्बुर, वही अनानियत, वही बंदगी नहीं हुई। मुख्तलिफ लाइफ स्टाइल को, वो मुकम्मल लाइफ स्टाइल को हमको चेंज करना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा कि जो इलाही अल्लाह को क्या पसंद है। हम ये तो देखते हैं ना कि हम जो लाइफ स्टाइल जो जी रहे हैं ये किस तबके को पसंद है, कैसे अफराद को पसंद है, किस कल्चर से मैच करता है, किस कल्चर से मैच नहीं कर, अपने आप को उस एतबार से ढालने की, ऐसा होता भी नहीं होता आजकल, मुकाबला है इसका, खास करके जो वेस्टर्न कल्चर है उसको हम बहुत ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं, ऐसे रहेंगे, ऐसे बोलेंगे, ऐसे ये करेंगे, फला करेंगे, ये सारी चीजें, यानी दरवाके हम वेस्टर्न कल्चर की इताहत करते हैं और हमारा वली हुआ। अल्लाह ये चाहता है कि हम वो लाइफ स्टाइल अपनाए जो इलाही है अल्लाह, हम हर लम्हे ये सोचे कि हम क्या करें कि जो हमारे अल्लाह को पसंद आ जाए, यही कुर्बत है। अगर इंसान के जहन में ये बात बैठ जाए कि जिंदगी के हर लम्हे में इस बात की कोशिश करे कि अपने अल्लाह की पसंद और नापसंद का ख्याल रखे, तो बस यही कुर्बत होगा, यही अल्लाह की कुर्बत है, अलग से कोई बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें क्या क्या करना है क्या नहीं करना, तो यहां पे इंसान मसावात, इंकिसारी, कल्चरल एतबार से सबको ये एहराम में दूसरी चीजों में कोई फर्क नहीं है, यानी दुनिया के जितनी चीजें हैं, चाहे वो सामाजिक चीजें हों, चाहे रसूमात हों, चाहे खानदानी चीजें हों, चाहे वो कल्चर हो, सबको तोड़ के एक इलाही माहौल को पेश किया गया, और एक ऐसा कैंप लगाया गया कि जिसमें इंसान एक तूलानी मुद्दत तक अपने आप को उस इलाही माहौल में ढालने की कोशिश करे, ताकि जब वहां से आए तो अल्लाह का वाकई और खालिस बंदा बन के निकले। अब ये और बात है कि उस फलसफे को भुला देते हैं और वहां जाके भी वो नहीं हो पाते हैं कि जो अल्लाह चाहता है। इसीलिए कहा गया कि जब इंसान ज्यारत पे जाए तो जैसा गया वैसा ना आए, बदल क्या है,
جب انسان حج پہ جائے تو جیسا گیا ہے ویسا نہ پلٹے, یہ دعا کر کے جائے پہلے ہی.

0: कदम यह है कि पालने वाले हमको ऐसा ना पलटाना, वरना ये तो सिर्फ निगाहों की ज्यादात होगी, बस जाहिरी चीजें होंगी, हकीकत नहीं होगी। तो ये रवायत पे बात शुरू करनी थी, लेकिन बात यहाँ वक्त भी नहीं है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते से रवायत पे बात करेंगे, ज्यादा रवायतें नहीं है, कमी है, और जल्दी इसको ख़त्म करेंगे ताकि आगे के मौजूदात पे बात करें। तो हज जो आयात की रोशनी में जो गुफ्तगु हुई है, दरवाक़े हज वो चीज़ है कि जो इंसान को अल्लाह से करीब करती है, इसीलिए ये भी कहा गया कि हज दीन से कुर्बत के लिए, करीब होने के लिए, यानी जो दीन का सिस्टम है, जब इंसान हज करके आता है तो जो दीन का सिस्टम है इंसान उससे करीब हो जाता है, नज़दीक हो जाता है, और जब इंसान दीन से कुर्बत और दीन की तकवियत, दो अलग चीज़ें नहीं, अगर इंसान दीन से करीब होगा तो दीन खुद ब खुद कवी होगा, खुद दीन बनवाने सिस्टम कवी है, इसमें कोई शक नहीं, वो कमज़ोर नहीं है, उसके अंदर ये सलाहियत है कि सब पे गालिब आ जाए, कुरान की आयत है, ये बारह हम पेश भी कर चुके, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ पे जो दीन की तकवियत है वो ये कि जो माशरे में, समाज में, अमली सूरत में दीन है ये कितना कवी है, हमारे अंदर दीन कितना कवी है। मिसाल के तौर पर पर्दा एक कवी चीज़, इसमें कोई शक नहीं, हमारे माशरे में पर्दे का कल्चर कितना कवी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। लिहाजा जब हम दीन पे अमल करेंगे और मुख्तलिफ जिहाद से उसको समझेंगे, फ़लसफ़े को समझेंगे, उसको अपनाएंगे, उससे करीब होंगे, तो जितना हम दीन से करीब होते जाएंगे उतना दीन हमारे माशरे में कवी होता जाएगा। दीन का कवी होना ऐसा नहीं है कि मसलन हम वैसे ही हो दीन, नहीं, दीन का कवी होने का मतलब ये कि हम कवी होंगे क्योंकि हमारा दीन है, हम उस पर अमल कर रहे हैं। इंसान जिस सिस्टम को फॉलो करता है उस सिस्टम की जो कुव्वत होती है जब फॉलो करता है तो उसके अंदर आ जाती है। अगर कुरान ने कहा है कि मसलन इसके अंदर ये सलाहियत है कि दूसरे अदियान पर गालिब आ जाए, तो कौन गालिब आएगा, जो उस पर अमल करेगा वो गालिब आएगा। ये इम्तियाज, ये इनाम अमल करने वालों को मिलेगा, ऐसा थोड़ी है कि अमल करने वाला अलग है और फिर वो एक अलग कोई चीज है कि जो गालिब आएगा। तो लिहाजा जितना इंसान दीन से करीब होगा उतना सही मानों में देखा जाए तो दीनदार कवि होगा, दीन कवि होगा। इज्तिमाई तौर पर जैसे माशरे में कहा जाता है कि फलां कौम के लोग, फलां मजहब के लोग कवि हैं, फलां कौम के लोग, फलां मजहब के लोग कमज़ोर हैं, किस बुनियाद पे, या तो उनका सिस्टम कमज़ोर है या उस पर अमल कमज़ोर है। हमारा सिस्टम तो मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं, मुश्किल अमल की। जिस दिन अमल मजबूत हो जाएगा उस दिन बनवान कौम हम मजबूत हो जाएंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा इस फलसफे हज को समझने और उस पर अमल करें, करने की कोशिश करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा दीन से कभी भी करीब भी हों और बनवाने दीन कभी भी हों। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون اللهم صل وسلم على صاحب الدعوة النبوية
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: وصلاة الحيدرية
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والعصمة الفاطمية
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والحلم الحسنية
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: وشجاعة الحسينية
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والعبادة السجادية
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والآثار الباقية
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والماثر الجعفرية
1: اللهم صل على محمد وآل

हम गलत थोड़ी किया। आतिश नमरूदी के लिए अपने आप को आमादा कर। जनाब इब्राहिम बताना चाहते हैं कि देखो, तौहीद का रास्ता, मोजज़े का रास्ता ये नहीं है कि तुम अमल करो तो अल्लाह मसलन जो है वो तुम्हारे लिए इन चीज़ों से तुमको महफूज रखेगा। अपने आप को आमादा करके, ठीक है कि अल्लाह ने बाद में वो मोजज़ा दिखाया कि जनाब इब्राहिम के लिए आग को भी ठंडा कर दिया और इस्माइल को भी बचा दिया, लेकिन जनाब इस्माइल के गले पे छुरी रखने से पहले जनाब इब्राहिम को ऐसा नहीं मालूम था, लिहाजा आमादा थे कि अपने लड़के को कुर्बान कर सकते थे। आग में जाने से पहले नहीं मालूम था, आमादा थे कि अल्लाह के नाम पे उस आग में जल सकते थे। हम छोटी मोटी आग में जलने से भागते, छोटी मोटी मुश्किलात से जलने से भागते। हो सकता शायद कोई कहता कि मसलन ठीक है अभी बच तो गए ना, करबला आई है, वो सारे मसायब आलाम हो गए। होने के बाद अब जब पूछा गया कि कैसा पाया, तो जनाब ज़ैनब कहती हैं मा राय तो इल्ला जमीला, सिवाय जमाल के कुछ नहीं देखा। ये तौहीद है, तौहीद का जलवा। अब ये जो अंबिया और अइमा की विलादत होती है, इससे हमें इन चीजों को सीखना चाहिए। अगली मुनासिबत 25 तारीख है, जिसको दहबुल अर्ज कहा जाता है। ये वो तारीख है कि जिसमें ज़मीन को, दहबुल अर्ज के मानी है ज़मीन को बिछाना या ज़मीन को फैलाना। तवायात में है कि इस तारीख से जहाँ पे खाने काबा है, उस जगह से पानी के अंदर से खुश्की को निकाल के अल्लाह ने खुश्की को बिछाया और बिछाना शुरू किया। मुबारक तारीख मानी जाती है, और इस तारीख में बाज़ आमाल हैं, रोज़ा मुस्लिम कुछ चीज़ें हैं कि जो इस तारीख की हैं। कुरान मजीद ने भी दहबुल अर्ज का जिक्र किया है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वलअर्ज़ बादा ज़ालिक दहा है, उसके बाद ज़मीन का फर्श बिछाया है। मौजूदा हालात में जल्दी से बात चीज़ें हैं उसमें, मौजूदा हालात में एक बहुत, हो सकता है शायद सुनने में बहुत आम सी बात हो लेकिन हकीकत है और बहुत बुनियादी चीज़ है। हुज्जतुस्सलाम सैयद निज़ामुद्दीन है इमामी, एक बुजुर्ग आलिम दीन है, एक जगह के इमाम जुमा है ईरान में। एक बहुत ही बुनियादी जुमला वो कहते हैं कि मिल्लत ईरान की फतह का राज वली फकीह की इताअत है। इस चीज़ को हम अमलन देख रहे हैं, वक्त यह है कि इसको समझने की ज़रूरत है, इस पर गौर व फिक्र की ज़रूरत है। अगर वो लोग अपनी लीडरशिप पे अमल नहीं करते, उसको फॉलो नहीं करते, आज ये सरफराजी उनके पास नहीं होती, आज ये सरबुलंदी उनके पास नहीं होती। इलाही ओहदों लीडरशिप को फॉलो करने की बरकत है कि जो आज उनको ये अल्लाह ने कामयाबी और फतह अता की। गौर करने की जरूरत है, इस्लाम के निज़ाम में से है, सिस्टम में से है, बुनियादी चीज़ों में से है। इसीलिए बहुत सारे उलमा कहते हैं कि वली फकीह की तज़ईफ, तज़ईफ कहते हैं कमज़ोर करना, दरवाक़े दीन की तज़ईफ। फिर यहाँ उसी एतबार से सिस्टम मजबूत रहेगा, सिस्टम में थोड़ी फ़र्क होगा, अमली एतबार से दीन कमज़ोर पड़ जाएगा। अमली एतबार से दीन, हमारे माशरे के बीच में दीन कमज़ोर पड़ जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो लीडर है कि जो दीन को फॉलो करवाएगा, लीडर है कि जो अमल करेगा। जब वही कमज़ोर होगा तो उसकी बात पर कौन अमल करेगा? दुश्मन का काम नहीं। लिहाजा वली फकीह को फॉलो करना, वली फकीह को सपोर्ट करना, ये इंसान की मजहबी जिम्मेदारियों में से है। इससे पहले भी हमने अर्ज किया, तो फिर अर्ज कर रहे हैं कि जिस तरीके से शहीद रहबर मौज़म के लिए नेगेटिव प्रोपेगेंडे और मुखालफतें थीं, आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनाई के लिए भी वो चीज़ें पेश आ रही हैं और आने वाले वक्त में हो सकता है कि बढ़ें। हमको उन हालात को फेस करने के लिए आमादा रहना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले दमिश ज़ैनबिया में एक धमाका हुआ कि जिस हरा में सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा में, जिसमें वहाँ के ख़तीब हुज्जतुल इस्लाम सैयद फरहान हसन मंसूर शहीद हो गए। सबसे पहले बीबी के हरम में जो ये धमाका हुआ, जिसने भी किया उसकी मजम्मत करते हैं, उसकी नाबूदी की दुआ करते हैं कि उसने इस मुकद्दस जगह की बेहुरमती की है,
بی بی کا حرام سب کے لیے مقدر.

बहुत सारे दर्स हैं कि जो वहाँ से मिलते हैं। और फिर उसके बाद ये अजीम बुजुर्ग आलिम दीन की जो कि हयात उलमाए शिया सूरिया के एक रुकन थे और हरम जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खतीब भी थे, इनकी शहादत की भी हम तसलियत और ताज़ियत पेश करते हैं। जैसा कि शहादत बहरहाल एक इफ्तिखार की चीज़ है, इंसान की कामयाबी की चीज़ है, तो जहाँ पे हम तसलियत और ताज़ियत पेश करते हैं वहीं पे इनकी फैमिली के सामने मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपकी फैमिली से ऐसी ज़ात है कि जो अल्लाह की राह में उसने अपनी जान दे दी, कि जो इंसान की ज़िंदगी के कामयाबी की दलील है, इंसान की ज़िंदगी की कामयाबी इसी में है कि उसको खूबसूरत मौत मिले, अच्छी मौत मिले। उमर आदमी इस बात को नहीं समझता है तो इसी से भागता है। खूब आखिर में एक जुमला, अरब ममालिक में बस ऐसी चीज़ें दिखने में आ रही हैं कि जिसमें तशैयों पे जुल्म हो रहा है, बस अरब ममालिक में शियों पे जुल्म हो रहा है। उर्दू में एक मुहावरा है कि धोबी से नहीं जीते तो गधे का काम बैठे, मसलन जब असल से नहीं जीते तो जिसको कमज़ोर पाया है उसी पे हाथ साफ कर रहे हैं। ईरान से नहीं जीते तो अब शिया जहाँ जहाँ मिल रहे हैं उनको परेशान कर रहे हैं। बहरहाल ये बहुत घिनौना काम है, जुल्म है, इंसानी हकूक के खिलाफ है, तासुब का काम है, जाहिलियत का काम है, इसकी मजम्मत करते हैं। जो लोग भी इस काम को कर रहे हैं मुलविस हैं, उनसे ये अपील गुजारिश या कहना है कि वो जल्द अज जल्द इस जुल्म को तर्क करें, क्योंकि जो आपके हालात ख़राब हुए हैं यकीनन उनको अंदाज़ा होगा, लेकिन इन हरकतों से मज़ीद हालात ख़राब होंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मालूम है कि ये काम आप अमेरिका और इसराइल की ग़ुलामी में कर रहे हैं, आप इबादत लें कि अमेरिका और इसराइल की ग़ुलामी ने ही आपको यहाँ तक पहुँचाया है, अब क्यों आप उस रास्ते पर जा रहे हैं कि जहाँ पर यह ग़ुलामी आपको मज़ीद बर्बाद कर दे। आखिर में बारगाह परवरदिगार में दुआ करते हैं पालने वाले हम सबको आमाले सालेह की तौफीक, बारगाह आमाले कबीहा से महफूज, पालने वाले हमारे गुनाहों को बख्श, बारगाह हमारे मरहूमीन को बख्श, पालने वाले इस्लाम मुस्लिमीन की हिफाजत फरमा, बारगाह दुश्मनान इस्लाम को निस्तो नाबूद, पालने वाले हमारे उलमा का साया हमारे सरों पे बाकी, बारगाह रहबर और मराजे को दिल उम्र नाहिद, पढ़ने वाले हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील, हमें उनके आवान और अंसार में शामिल होने की तौफीक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।